0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दो लक्ती र हडबरा पानी बस्छ बेर अस्तिम चाम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्ठी ठिपकम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम डिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिह ध्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुई लोगों से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: बाबा मेरो जन्मदिन पनि आउन लागिसक्यो केक अर्डर गर्नका लागि कहाँ जाने
5: अब ढुक्क भएर मनकामना बेकरी एन्ड केक सप फुरिगाउँमा जाने नि
6: हामी कहाँ दुध दही मही घिउ पनिर छुर्पी लस्सी विभिन्न प्रकारका आइसक्रिम जन्मदिन वैवाहिक समारोह वार्षिक उत्सव लगायतका कार्यहरूमा आवश्यक पर्ने केक पाइनुका साथै चिया कफी पनि उपलब्ध छ अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ मनोकामना केक एन्ड बेकरी सब पुरानो ठाउँबाट कञ्चनपुर जाने बाटो एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको तल्लो सटरमा सरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ प्रोपराइटर सुशील रावत सम्पर्क नम्बर 98

0: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया।
1: फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।